0: कैसे हैं आप?
1: CFCR acknowledges that we broadcast from Treaty 6 territory, the homeland of the Cree and Métis nations, and the traditional territories of the Dene, Soto, Dakota, Lakota, and Nakota. We pray our gratitude to the First Nations and Métis people who have called this ancestral land home for generations and whose histories, languages, and cultures continue to influence our community. On a foundation of reconciliation, recognition, and respect, CFCR is committed to reaffirming relationships with one another and to establishing new ones.
2: Don't miss Filipino-Canadian pop sensation Miko at the Saskatoon X on August 4th. Miko has built a massive global fan base, and now he's bringing his high-energy, unforgettable live show right here to Prairieland. Whether you've been following his journey from the start or you're just looking for the ultimate summer night out, this is the show you can't miss. Miko at the Prairieland Saskatoon X on August 4th. Get your tickets now at saskatoonx.com.
3: Feeling stressed, sore, or overwhelmed? At Float Love, you'll float effortlessly in a tank filled with 51% water and 49% Epsom salt for 75 minutes of total relaxation. Let the buoyancy take the weight off your body as it soothes sore muscles, reduces stress, and improves sleep. It's proven to help with anxiety, chronic pain, and even mental clarity. Floating is the effortless reset your mind and body need. Float Love. Unplug, recharge, and feel amazing. Book your float today at floatlove.ca.
4: Get ready for a tapestry of cultures. Saskatoon Folk Fest returns August 14th and 15th at Prairieland. Experience a world of culture in one vibrant location. With 11 exciting pavilions under one roof, it's never been easier to explore global traditions, taste authentic food, and enjoy music and dance from around the world. From Norway to Nigeria, India to the Philippines, your passport to the world is just $10 a night. Kids 12 and under are free. Saskatoon Folk Fest, August 14th and 15th at Prairieland, 3 p.m. to midnight. Celebrate, explore, belong.
0: Hello, good morning, namaste, Saskatoon. CFCR 90.5 FM पर हर शनिवार को जैसे हम आ जाते हैं आपके मनपसंद प्रोग्राम संगीत माला लेकर जो प्रस्तुत करते हैं ICCA की बदौलत. और मैं नीपा कौशिक आज के प्रोग्राम में आपका साथ दूंगी और मेरा साथ देने वाले हैं हमारे होस्ट
5: और दोस्त विनीत.
0: कैसे हैं विनीत जी आप?
5: बस एकदम बढ़िया. आप फरमाइए, आप कैसी हैं नीपा जी?
0: हम एकदम सही हैं, ठीक है. और आज जो है ना, आपने सुबह नाश्ता किया था कुछ?
5: हाँ,
0: क्या किया?
5: बहुत अच्छा नाश्ता किया था.
0: नाश्ते के बगैर सुबह होती ही नहीं है, आपको भी पता है. और आज के इस प्रोग्राम में पता है खाना गाना सब की बात करने वाले हैं हम.
5: ओह रियली?
0: जी हाँ.
5: तो ऐसा क्या लाई हैं आप, थोड़ा सा हमें हिंट देंगी तो मजा आएगा हमारे सुनने वालों को.
0: थोड़ा सब्र कीजिए. देखिए, आपको पता है हमेशा हम हमारे लिसनर्स को बताते ही हैं कि हम प्रोग्राम में किस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं. और हमारे शो में हम कभी कभी गेस्ट भी बुलाते हैं, आपको भी पता है ना?
5: एब्सोल्युटली.
0: तो आज गेस्ट भी आए हुए हैं और हमारे खास जो सैटरडे संडे जो हमारा दिन होता है, हम शुरुआत करते हैं अच्छे खाने से और गाने को लेकर हम आ ही जाते हैं. तो हम आज दो बड़े कलाकारों के बारे में बात करने वाले हैं, हमारे जो बॉलीवुड के बड़े ही नामी सिंगर रह चुके हैं.
5: जी,
0: तो
5: एब्सोल्युटली उनके बारे में हम बूझो तो जानो खेलेंगे ही.
0: हाँ?
5: मगर उससे पहले मैं हमारे कार्यक्रम के जो प्रायोजक हैं उनके बारे में बता दूं सबको. तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हर शनिवार को ठीक सुबह 11 बजे सैस्केटून लोकल टाइम पर हम संगीत माला आपके सामने प्रस्तुत करते हैं. और इस प्रोग्राम के जो प्रायोजक हैं, जो हम ये प्रोग्राम हम जिसकी हेल्प से लाते हैं, वो है ICCA, विच इज़ इंडिया कैनेडा कल्चरल एसोसिएशन. दोस्तों, ये जो संगठन है ये 50-60 साल पुरानी संगठन है, हमारे कैचुवन में चलती आ रही है. और एक इंडिया और कनाडा का एक कल्चरल कनेक्टिविटी जो है मेन इनका एम होता है. और आए दिन ये तरह तरह के प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं. और हाल फिलहाल में जो सबसे लेटेस्ट इवेंट इनका है वो 9 तारीख को है, हमारी 15 अगस्त की जो इंडिपेंडेंस डे है उसके ऊपर. तो 9 तारीख को सुबह 9 बजे फ्लैग होस्टिंग होगी, 8 बजे मेरे ख्याल में. अच्छा
0: विनीत जी, देखिए हम ये जानकारी तो ऑफकोर्स हमारे

0: बिजनेस को देंगे, लेकिन मुझे लगता है अभी उनको इंतजार है कि हम बूझो तो जाने में
1: एब्सोल्युटली
0: किसके बारे में बताने वाले हैं।
1: जी जी जी, तो आप मुझे बताइए पहले आपके क्या क्वेश्चंस हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम।
0: तो देखिए, ये जो आज के संगीतमाला में हम दो बड़े महान गायकों के बारे में बात करने वाले हैं, एक जो गायक है उनकी बर्थडे अभी दो दिन पहले गई
1: जी,
0: और जो दूसरे महान गायक है उनकी कल डेथ एनिवर्सरी थी
1: जी।
0: तो आपको मैं बता रही हूँ कि ये जो हम गाना चलाएंगे वो आप गाना चलाते ही हमारे लिसनर्स को अंदाजा आ ही जाएगा, तो ज्यादा देर ना करते हुए सुना ही देते हैं ये गाना।

0: आंखों के मोती तेरी। बिल्कुल सही पहचाना, और हमें कॉल भी आ चुका है। किरण जी ने कहा कि शायद सोनू निगम है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना किरण जी आपने। आज के इस संगीतमाला में हम बात करने वाले हैं सोनू निगम जी की, और हम सबको पता है कि सोनू निगम जी की आवाज़ जो है वो मैच होती है हमारे मोहम्मद रफ़ी जी से। तो सोनू निगम के जो गुरु कह सकते हैं विनीत जी, वो जी मानते थे मोहम्मद रफ़ी जी को। सोनू जी को बचपन से गाने में शौक था, क्योंकि उनके पिताजी और माताजी दोनों ही सिंगर थे। दिल्ली में उनका बचपन तो गुजरा था, लेकिन बोलते ना उनके पिताजी के साथ में वो हमेशा अक्सर लाइव शो में जाया करते थे, और उनको 4 साल की उम्र में ही स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका भी मिला था
1: जी।
0: तो वो अपनी लाइफ में जो भी आज जो उन्होंने मुकाम हासिल किया है, वो पूरा क्रेडिट पूरा श्रेय अपने पिताजी को देते हैं और देते हैं हमारे मोहम्मद रफ़ी जी को। और देखिए, ये तो हम लोगों ने कह दिया कि आज के प्रोग्राम में हम किन कलाकारों के बारे में बात करने वाले हैं, और अब हमारे गेस्ट जो हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं, विनीत जी मैं चाहती हूँ आप उनका इंट्रोडक्शन ज़रा अच्छे से दे दीजिए।
1: एब्सोल्युटली, तो हमारे बीच आज बैठे हैं सस्केचविन के एक हस्ती हैं, वो हमारे एक फेमस पर्सनालिटी है, द इंडिया करी हाउस के ओनर श्री कपिल जग्गी जी। कपिल जी, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं हम स्टूडियो में।
2: थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी।
1: एब्सोल्युटली, तो आज जो हमारा प्रोग्राम है, हम थोड़ी वार्तालाप इनसे करेंगे, थोड़ा हम पूछेंगे इनके बारे में, और इनके रेस्टोरेंट्स के बारे में पूछेंगे, और आगे इनके क्या प्लान्स है वो इनसे जानेंगे।
0: और हाँ, देखिए आपको भी अगर आपके कोई सवाल हो जो आपको जग्गी जी से पूछने हो, या हमारे इस प्रोग्राम में आपको किसी को कोई भी गाना डेडिकेट करना हो, तो विनीत जी हमारे स्टूडियो का नंबर आप बता दीजिए।
1: एब्सोल्युटली, विच इज 3062425002। बेशक आप हमें इस पे कॉल कर सकते हैं, और आपकी डेडिकेशन दरख्वास्त या कोई भी आपको किसी को बर्थडे रिक्वेस्ट करनी हो, विश देनी हो, तो आप कॉल कर सकते हैं बेशक। तो आगे बढ़ते हैं नीपा जी, और मैं चाहूँगा कि आप शुरुआत करें कपिल जी के साथ।
0: जी हाँ,
1: हमारे वार्तालाप की।
0: कपिल जी, आपको यहाँ पर आपने जो ये द इंडिया करी हाउस खोला है, तो मुझे लगता है कि लोग इतने खुश थे, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं यहाँ पर 2012 में आई थी, तो बस एक ही रेस्टोरेंट हुआ करता था, और जब धीरे धीरे अभी रेस्टोरेंट्स बढ़ने लगे, लेकिन जब से आपका रेस्टोरेंट खुला है तो यहाँ के लोग इतने खुश हुए हैं। और मुझे पता है जब हम रजायना जाया करते थे ना, तब वहाँ पर आपकी एक फ्रेंचाइजी थी, राइट?
2: जी, अभी भी है।
0: अभी भी है, तो वहाँ पर हम ऑलवेज, हमारे फ्रेंड्स भी बोलते थे कि आप अगर रजायना चाहते हो तो वहाँ पर जरूर जाइएगा, और फिर हम हमेशा पूछते थे कि आप सास्कटन में क्यों नहीं खोलते, तो उन लोग ने तब हमें कहा था कि नहीं, हम प्लान कर रहे हैं। और जब आपने यहाँ पे जो अपना ये रेस्टोरेंट की इनॉग्रेशन की, तो सब लोग इतने खुश हुए थे कि थैंक यू सो मच। एक है ना, पेड़ से ही इंसान के दिल तक पहुँचते हैं, तो आप वो काम करते हैं कि सबकी जो पेट की जो खाने की जो होती है ना, एकदम कि इंडिया की याद आ जाए। तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि आपको रेस्टोरेंट खोलना है?
2: ये ऐसा कोई आइडिया नहीं था, ये तो एक तरीके से मेरा सपना ही था। तो ये आइडिया तो
1: जी
2: तब आता है कि आपको करना है, बट ये तो मुझे लगता है कि मैं स्कूल टाइम से एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता था। तो इनफैक्ट मैं 12th में था, तभी से ही मुझे था कि मेरे को अपना रेस्टोरेंट करना है। तो और ये आई थिंक विरासत में मिला मुझे। मेरे पापा एक पैशन से शेफ थे।
0: अरे वाह।
2: हम बिजनेसमैन फैमिली से हैं, बट वो उनको कुकिंग का बहुत शौक था। तो जब भी कुकिंग किया करते थे, तो मैं काउंटर टॉप पर बैठ के उनको देखा करता था, कैसे बना रहे हैं, कैसे भून रहे हैं, क्या मसाला डलता है, क्या पहले क्या बाद में। तो आई थिंक उससे मेरे अंदर वो उसका पैशन जाग गया, तो मैं हमेशा से एक रेस्टोरेंट तो खोलना चाहता ही था।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए, यही है ना कि आपने कहा, जैसे आपने 12th के बाद में सोचा था, सेम हमारे सोनू जी का यही हाल था कि 12th के बाद उन्होंने डिसाइड कर दिया था, और उनके पिता को लगा कि नहीं, सोनू निगम की आवाज़ बहुत ही अच्छी है, तो मुंबई से कोई बेहतरीन जगह हो ही नहीं सकती है।
1: बेशक।
0: तो वो आ गए थे हमारी मुंबई नगरी में, और उन्होंने काफ़ी पापड़ बेले हैं। और जैसे मैं कहती हूँ कि उन्होंने अपना गुरु हमेशा से मोहम्मद रफ़ी जी को माना है, तो मैं एक गाना मोहम्मद रफ़ी जी का भी बजाना चाहती हूँ।
1: इरशाद, वो गाना कौन सा है वो मैं बता देता हूँ। वो है फिल्म कोहिनूर से नौशाद अली का म्यूज़िक, शकील बदायूनी के लिरिक्स, और मोहम्मद रफ़ी साहब की मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज़, मधुबन में राधिका नाचे रे।

0: क्या बढ़िया गाना है देखा। तो ये है हमारे रफी जी, और उनको है ना विनीत जी चौमुखा भी किया कहा करते थे।
1: अच्छा जी।
0: क्योंकि वो सैड गाने अच्छे से गाते थे, फिर खुशी के गाने अच्छे से गाते थे, कव्वाली बहुत अच्छे से गाते थे, और गजल तो आप
1: मतलब करीब करीब सारे रसों के गाने उनके कंठ में थे
0: जी। और सोनू निगम जी भी यही कहा करते हैं कि देखिए सोनू निगम जी तो आइडल मानते हैं रफी जी को, और कुमार सानू हो या उदित नारायण हो, काफ़ी सिंगर्स हैं जो रफ़ी जी को अपना गुरु मानते हैं।
1: जी जी।
0: तो रफ़ी जी ने उस वक्त अपने आप को कैसे ट्रेन किया होगा, क्योंकि उनके पास तो वो ऑडियो का ज़माना था नहीं, रिकॉर्ड का ही ज़माना था, तो तब सब लोग भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे रिकॉर्ड प्लेयर घर पर लाकर सुन सुन कर करना। क्योंकि सोनू निगम कहते हैं कि वो एकलव्य की तरह हमेशा से रफ़ी जी को ही सुन सुन कर, उनको मिले नहीं थे लेकिन उनको सुन सुन कर वो अपनी आवाज़ को इतने अच्छे से ट्रेन करते थे।
1: जी।
0: तो रफ़ी जी ने उस वक्त कैसे अपनी आवाज़ को ट्रेन किया था वो आपको पता है?
1: नहीं।
0: तो रफ़ी जी है ना बचपन में अपने भैया की स्टोर पे जाया करते थे, और वो जब छोटे थे ना तो वहाँ पे फ़कीर जी आया करते थे, तो फ़कीर जो है वो सूफी गाने बहुत गाया करते थे
1: जी।
0: और रफ़ी जी को इतना शौक़ था म्यूज़िक का कि वो फ़कीर जी से गाते गाते चलते थे, तो रफ़ी जी उनके पीछे पीछे चले जाते थे, और गाँव की जो सरहद होती ना तब तक वहाँ तक वो पहुँच जाते थे, और फिर वो फ़कीर जी तो चले जाते थे, फिर रफ़ी जी वापस आकर अपने भाई की दुकान पर बैठकर वही गाने को गाया करते थे। तो वही है, इसलिए उनकी आवाज़ में सूफिया अंदाज ज़्यादा हमें देखने मिलता है।
1: Absolutely.
0: एकदम प्योरिटी जो है वो उनकी आवाज़ से झलक रही है।
1: एब्सोल्युटली। और मेरे ख्याल में सोनू जी भी जो हैं बॉलीवुड में, उनकी एंट्री भी जो हुई थी वो रफ़ी जी की आवाज़ को बेस बना करके ही, वो यहाँ जितने भी जगराते होते थे वहाँ पे जाया करते थे, और काफ़ी उनकी आवाज़ मिमिक होती थी रफ़ी साहब से, और मेरे ख्याल में उनको पहला ब्रेक भी
0: सीरीज़ वालों ने ही
1: इसी वजह से दिया।
0: किशन कुमार जी ने जब ये उनकी जो मैंने कहा कि हम लोगों ने जो गाना चलाया
1: जी
0: अच्छा सिला दिया, और फिर उन्होंने काफ़ी एल्बम्स भी बनाए थे, तो उसमें से एक एल्बम था दीवाना, आपने सुना है कपिल जी? आपने वो एल्बम के बारे में सुना है?
2: जी, वो तो उस ज़माने की बड़ी पॉपुलर एल्बम थी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत वीडियोस और एल्बम्स नहीं आती होती थी, तो सोनू निगम की दीवाना आई थी, और मुझे याद है कि वो सीडीज होती थी तब, तो कोई
1: सीडी और पेन ड्राइव का जमाना होता था,
2: पेन ड्राइव्स का जमाना होता, तो मैंने वो सीडी लेके मैंने एक अपनी अजीज को गिफ्ट भी करी थी
1: जी।
0: क्या तो, तो चले तो आप ही का वो दीवाना, मुझे भी वो बेहद, उसके सारे गाने इतने सुरीले और अच्छे हैं, तो विनीत जी सुना देते हैं दीवाना एल्बम का एक प्यारा सा गाना।
1: एब्सोल्युटली। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, साजिद वाजिद का म्यूजिक, फैज अनवर के लिरिक्स, और संग बाय नन अदर देन सोनू निगम साहब।

0: तो ये था हमारे गेस्ट कपिल जी के पसंद का गाना, जो मुझे लगता है ये एल्बम 90s में काफ़ी
1: पॉपुलर हुई थी।
0: हाँ, पॉपुलर हुए थे। और देखिए, सोनू निगम जी को जैसे ब्रेक मिला और फिर उन्होंने काफ़ी दो तीन भी एल्बम्स बनाए थे, और रफ़ी जी के और सोनू जी के हम बात एक साथ ही गाने चला रहे हैं। तो अभी हमें कॉल आया था सुभाष कपूर जी का, और उन्होंने कपिल जी आपको हाय कहा है और कहा है उनको बहुत खुशी हुई जब आप हमारे गेस्ट बनकर हमारे स्टूडियो में आए हैं, और वो आपके लिए एक मोहम्मद रफ़ी जी का ही गाना प्ले करवाना चाहते हैं। तो फिल्म आई थी चित्रलेखा, रफ़ी जी की ही आवाज़ में बेहद सुरीला और बेहद दर्द भरा गाना है, लेकिन आप ऐसा मत समझिए सिर्फ आपके लिए उन्होंने कोई भी गाना चलाने के लिए कहा था, तो आपके लिए ये गाना हम प्ले कर रहे हैं। फिल्म चित्रलेखा से रफ़ी जी की आवाज़ में गाया हुआ ये गाना, मन रे तू काहे ना।

0: this summer, there's even more to discover at the Saskatoon X. Meet the Super Dogs in the Co-op Family Fun Zone, then cool off with incredible magic, comedy, and live entertainment inside the air-conditioned Summer Fair building. Explore hands-on fun at the brand new Sask Milk Egg Pavilion and sing along with Midway Melodies, a group karaoke experience. It's more than a day at the X. It's a full day of family memories, all included with your admission. One ticket, endless memories. Buy your advanced general admission tickets today at saskatoonx.com.
1: Birkenstock sandals, blunt stone boots. Don't have socks, covers the feet on the day or night commutes.
2: We've got an incredible selection of Birkenstocks with more coming in all the time. With different styles, colors, patterns, and materials, there's something for everyone. Get ready for the beach, pool, or boat with Birkenstock's waterproof EVA sandals. Stop by the shop today to check out our stock.
1: Now all the ladies and the gentlemen, they all ask how and where. The Broadway Shoe Repair. The Broadway Shoe Repair.
3: Looking for the most sophisticated secret in town? The venue at McLean Block is waiting. Nestled in Saskatoon's historic downtown core, the venue's heritage space offers 3,000 square feet of timeless luxury for your event. Whether it's an intimate wedding or a cocktail soiree, mix old-school glamour and cutting-edge style in our sleek lounge and private mezzanine, and dance the night away on our legendary horsehair-sprung floors. The venue at McLean Block, 265 3rd Avenue South, where memories are made. Start your story today at mcleanblock.com.
4: Find your ideal property in Saskatoon with Shukla Realty. Shalini and Shekhar Shukla with RE/MAX Saskatoon provide seamless real estate solutions for effortless property sales. Whether you're looking for a single-family home or a luxury estate, a condo or a townhouse, a commercial space or an investment opportunity, our curated selection of properties will meet your needs. From teaching college students to becoming real estate experts, Shukla Realty is the name you can trust, guaranteed. Visit shuklarealty.com, that's S-H-U-K-L-A, or call 306-891-5580 for a free consultation today.
5: Do you own a business in Saskatoon? Do you enjoy this program on CFCR? Now we come to the big question. Do you think other people who enjoy this program might be interested in your business? If you provide a good or service that would appeal to Saskatoon's multicultural audience, you should be advertising in this very spot. Call 664-6678 Monday through Friday during business hours for more details on how you can advertise on Saskatoon's community radio station, CFCR 90.5 FM.
6: वेलकम बैक टू संगीत माला. जो आप सुन रहे हैं CFCR 90.5 FM पर मेरे यानी नीपा के साथ और मेरा साथ दे रहे हैं
7: आपका होस्ट एंड दोस्त विनीत. और आज हमारे समक्ष जो बैठे हैं, जैसा आपने पहले भी बताया था, प्रशांत हरजाई जी जो ICCA के ट्रेजरार हैं. वी वेलकम यू प्रशांत जी टू द स्टूडियो. हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं. कैसे हैं आप?
8: बहुत बढ़िया विनीत जी, थैंक यू सो मच नीपा जी फॉर हैविंग अस हियर टुडे. और सबसे पहले नमस्ते सास्काटून.
7: एब्सोल्युटली, हम भी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं. तो दोस्तों, प्रशांत जी के लिए हमारे पास कुछ सवाल हैं जो हम उन पे सीधे दागेंगे और आई होप उनके पास सारे जवाब हों हमारे लिए. तो प्रशांत जी, मैं चाहूँगा थोड़ा ICCA के बारे में आप हमारे सुनने वालों को और अवगत कराएं और आगे बताएं.
8: सो ICCA इन सास्काटून जो बनी वो 1960 से है यहाँ पे. सो ऑलमोस्ट 60-65 ईयर्स हो गए हमें कम्युनिटी को सर्व करते हुए. ICCA का एक वही है कि जैसे कोई इंडिया से आ रहा है कनाडा, तो उसको हम सेटल करा पाएँ, उसको हम यहाँ पे सोशली कनेक्टेड करा पाएँ अदर पीपल से, थोड़ा उनको एक घर की फीलिंग दे पाएँ कि ठीक है वो छोड़ के आए हैं इंडिया, दो वी आर हेयर टू हेल्प देम, है ना. सो ये ICICA का एक्चुअली विज़न है टू सर्व द कम्युनिटी. उसके बाद थोड़े इवेंट्स हैं हमारे लाइंड अप, वो जैसे जैसे शो बढ़ेगा मैं आपको बताता जाऊँगा.
7: जी,
8: कोई पर्टिकुलर और कोई क्वेश्चन है आपको इवेंट को लेके?
7: एब्सोल्युटली, मैं आपसे इवेंट के बारे में ही पूछना चाह रहा था कि आने वाले दिनों में आपके कौन से इवेंट्स रिलेटेड हैं.
8: सो हमारा जो अभी अपकमिंग इवेंट होगा वो होगा 7-8-9 का, डेट वुड बी इंडिया इंडिपेंडेंस डे. वो हम बना रहे हैं इस बार एसोसिएशन विद हिंदू सोसाइटी ऑफ सस्केचवन.
7: जी,
8: वो होगा हमारा मंदिर में जो हमारा हिंदू टेम्पल है यहाँ पे लारोंच पे. और 7-8-9 तीनों दिन है, और 8 को 12 o'clock हमारी फ्लैग सेरेमनी है, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी है. मैं सारे इंडियंस को चाहता हूँ जो भी यहाँ पे हैं प्लीज़ आइए और हमारे साथ फ्लैग होस्टिंग कीजिए इंडिपेंडेंस डे की.
7: एब्सोल्युटली। और आगे भी आपके कोई इवेंट्स हैं उनके बाद?
8: उसके बाद हमारा जो मेजर इवेंट ऑफ द ईयर जो हम एज एन ICCA करते हैं, डेट इज़ फोक फेस्ट 2026। आइए, फैमिली को लेके आइए, बच्चों के लिए आइए, सबके लिए उधर सब कुछ है, बच्चे से लेकर हमारे बुजुर्ग तक, सबके लिए एंटरटेनमेंट, फूड, कल्चर परफॉर्मेंसेज, इट्स लाइक अ मेला।
6: जी हाँ, और हमेशा से ना ये फोक फेस्ट का सबको इंतजार होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा धमाल होता है, गाने होते हैं, खाना होता है, और हमेशा की तरह ये डे बाय डे एवरी ईयर ये ना इतना अच्छे से बढ़ रहा है और काफी तादाद में इंडिया से जो लोग आ रहे हैं और उनको इंडिया की याद ताजा हो जाती है।
7: एब्सोल्युटली। और हमने सुना है नीपा जी कि इस बार कुछ नया ला रहे हैं फोक फेस्ट वाले, इट वुड बी समथिंग डिफरेंट, तो थोड़ा सा उस बारे में भी हमको आप बताएं।
6: ना प्रशांत जी से यहीं पे है तो
8: अभी मैं वो नहीं बता पाऊंगा आपको, एक दो दिन पहले बता पाऊंगा, लेकिन फोक फेस्ट हमेशा कुछ नया करना चाहता है, ठीक है, वो हम डिस्क्लोज करेंगे एक दिन पहले, सो दैट उसका भी एक बना रहे स्वाद, खाने का स्वाद जो है वो बना रहे, बरकरार रहे, तो वो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ 14th और 15th अगस्त को 3 PM टिल मिडनाइट दोनों दिन वी इंडिया पेविलियन इज इन हॉल डी दिस टाइम। आइए, विजिट करिए, सबको लेके आइए, फूड इंजॉय कीजिए, कल्चर इंजॉय कीजिए, परफॉर्मेंसेज इंजॉय कीजिए और उधर की वाइब इंजॉय कीजिए। इवन इंडिया नहीं, इस बार 11 to 12 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग, सो हर कंट्री का अपना अपना एक जायका है, आप सब हॉल्स विजिट कीजिए, जहां जहां जा सकते हैं वो कीजिए, लेकिन इंडिया पवेलियन जरूर आइए।
7: एब्सोल्युटली। और इसकी टिकट्स कैसे क्या मिलेंगी वो भी थोड़ा आप बताएं हमें।
8: इसकी टिकट या तो आप फोक फेस्ट की साइट पे जाके उसको करा सकते हो, या वहां पे वॉक इन पे भी मिल रही है।
7: जी जी।
8: तो आप दोनों तरीके से आप खरीद सकते हो, अगर आपको तब भी चाहिए तो आप ICICA को भी रीच आउट कर सकते हो, वी कैन गेट इट टिकट्स फॉर यू गाइस। दूसरा ये, और फर्स्ट टाइम इस बार हम अपना एक हमारी पार्टनरशिप हुई है विद द इंडिया करी हाउस एज अ फूड पार्टनर फॉर फोक फेस्ट 2026। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, आइए कपिल जी के स्वाद का जायका लीजिए उधर और परफॉर्मेंसेस इंजॉय कीजिए।
6: तो कपिल जी, आप एक्साइटेड हैं कि नहीं कि ये आपका पहली दफा आप ये इसमें कर रहे हो ना पार्टिसिपेट?
9: जी, मैं पहली दफा कर रहा हूँ और वी आर रियली एक्साइटेड फॉर दिस, क्योंकि हमने कभी फोक फेस्ट में ऐसे पार्टिसिपेट किया नहीं है। तो अगेन, ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि हम फोक फेस्ट में इंडिया पेविलियन में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लोगों तक अपना स्वाद लेके आ रहे हैं।
6: जी हाँ, और मुझे लगता है कि बड़ा मजा आने वाला है। तो हमारे लिसनर्स को बता देते हैं, आप अब भी कोई भी काम हो वो छोड़कर जो हमारे प्रशांत जी ने डेट कही है वो डेट पर जाइएगा, और आपने कहा हॉल डी में, राइट?
8: 14-15 अगस्त, हॉल डी, इंडिया पेविलियन।
6: जी हाँ, तो देखिए विनीत जी, मेरे तो अभी से मुंह में पानी आने लगा है कि खाना और गाना और इतनी सारी एंटरटेनमेंट के लिए हम लोगों ने जो बंदोबस्त किया है
7: जी,
6: तो और हमें चाहिए भी क्या।
7: एब्सोल्युटली। आगे बढ़ते हैं और भी सवालात हम इनसे पूछेंगे, पर उससे पहले मैं चाहूंगा कि वापस से हम एक गाना प्ले करते हैं हमारे सुनने वाले के लिए। क्या आप बताएंगी किसकी दरख्वास्त आई है नीपा जी?
6: देखिए, सोनू निगम जी की बात कर रहे हैं तो सोनू निगम जी का ही एक गाना था, फिल्म आई थी परदेस, उसका गाना सुनना चाहते हैं टोरंटो से हरीश जी। तो आपको पता ही होगा कि सोनू निगम जी है ना नए थे, तो उनको भी एक बहुत ही बड़ा ब्रेक चाहिए था
7: जी।
6: तो अनु मलिक जी ने सोनू निगम को पहले कहीं सुना हुआ था, उनको दिमाग में था कि मुझे सोनू निगम से कोई गाना गवाना ही
7: जी।
6: तो उन्होंने फिर सुभाष जी से भी बात की और सुभाष घाई जी हाँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, नया लड़का है तो ले लेते हैं उसको भी। और शाहरुख खान जी वॉज इफ यू लाइक, सुना नहीं था सोनू निगम को, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं कैसा सिंगर होगा, लेकिन सुभाष घई को जो वो थे ना, जो हीरे परखने की उनको जो उनमें जो टैलेंट है, उनकी एक खुद की एक है उसकी
7: पारखी वाली नजर
6: जी, तो उन्होंने जो कहा, तो फिर अपने शाहरुख खान ने कुछ कहा नहीं, लेकिन जब उन्होंने सुना तो वो भी एकदम आपके शब्द में कहे मंत्र मुग्ध रह गए। और जो एनर्जी के साथ सोनू निगम ने जो गाना गाया है, तो हम हमारे लिसनर्स को सुना देते हैं हरीश जी की फरमाइश का, दिल दीवाना फ्रॉम परदेश।

0: दिल दीवाना, क्या जबरदस्त गाना है। और बस यही गाना था, उनके बाद तो सोनू निगम जी की तो पीछे मुड़कर देखने का मौका ही नहीं मिला है। और विनीत जी, आप हमारे प्रशांत जी से कुछ पूछना चाहते थे?
1: एब्सोल्युटली प्रशांत जी, तो मैं ये चाहूँगा कि आपने हमें अभी अभी बताया कि ये सारे प्रोग्राम्स रिलेटेड हैं, इसके अलावा पूरे साल भर में ICCA और किस क्षेत्र में अपना योगदान देती है?
2: तो फोक फेस्ट के बाद हम आ जाएंगे दिवाली पे, दिवाली मेला करेंगे हम फॉर द कम्युनिटी। आई थिंक इस बार भी हम हिंदू सोसाइटी ऑफ सस्केचुआन के साथ ही दिवाली मेला कर रहे हैं।
1: अच्छा जी।
2: उसके बाद काउंसलर कैंप इन नवंबर। काउंसलर कैंप जो वैंकूवर से आते हैं, जो हमारे भाई नहीं जा पाते यहाँ पे रेजाइना या कैलगरी या एडमिंटन पासपोर्ट के लिए, या कोई भी जो उनका काउंसलर रिलेटेड इश्यूज है, तो हम काउंसलर्स को यहाँ बुलाते हैं सो दैट वो आके अपना यहाँ पे काम करा लिए। तो नवंबर में हमारा वो लाइन अप है, फिर उसके बाद दिसंबर में हमारा न्यू ईयर लाइन अप है
1: जी।
2: तो ये सब इवेंट है टिल दिसंबर। फिर जनवरी में हमारा रिपब्लिक डे होगा, फरवरी मार्च में फिर हमारा एक इंडिया नाइट होता है विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट फॉर ICCA। सो हमारे दो बिगेस्ट इवेंट है, इवेंट तो सारे ही बिगेस्ट हैं, लेकिन इंडिया नाइट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट फॉर ICCA।
1: एब्सोल्युटली। और प्रशांत जी, मैं जानना चाहूँगा कि जो हमारे नए इमिग्रेंट्स होते हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए भी कोई स्पेशल प्रावधान है या कोई मेंबरशिप है जिनका वो लुत्फ उठा सकते हैं ICCA में?
2: बिल्कुल। जो हमारी मेंबरशिप है ईयरली फॉर फैमिली इज $50 और इंडिविजुअल के लिए $20 है, लेकिन कोई न्यू कमर है और कोई स्टूडेंट है उसके लिए हम फर्स्ट ईयर मेंबरशिप फ्री रखी जाती है, तो उनको दे डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू अस। उसके अलावा क्या बेनिफिट्स हैं एज अ मेंबर? एक तो इवेंट्स की जो भी टिकट्स होती हैं वो सब्सिडाइज मिलती हैं। दूसरा ये, हमारे पार्टनरशिप में कुछ बिजनेसेस हैं जो हमारी कम्युनिटी के हैं विच ऑफर बिजनेस, राइट? आप खाना खाने जा रहे हैं किसी रेस्टोरेंट पे, आप ICCA के मेंबर है सो हमारी पूरी लिस्ट है। आपको गाड़ी ठीक करानी है तो आप उस मैकेनिक पे जा रहे हो तो लिस्ट है। आपको कोई रियल एस्टेट का बिजनेस, रियल एस्टेट की कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो हमारे रियल्टर लिस्टेड है, आप उधर जाइए, यू विल गेट अ डिस्काउंट। सो $50 एक साल में पूरी फैमिली का लेके, मतलब उससे ज़्यादा कि हम सर्विसेज करते हैं, प्रयास कि हम अपनी कम्युनिटी को दें।
1: ये तो मुझे लगता है नीपा जी एकदम फायदे का सौदा है कि $50 में पूरी फैमिली को ICCA जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की।
0: जब भी कोई भी इंसान यहाँ पर मूव होता है तो उनको थोड़े थोड़े पैसे बचाने में हमेशा से सोचना चाहिए ना, क्योंकि इंडिया से जब आप आते हो, सेटल होते हो, तो हम हमेशा कोई डील ही ढूंढते हैं
1: जी।
0: तो ये जो हमारे ICCA वाले लोग हैं जो इतनी सारी कर रहे हैं, सबको उपलब्धियां जो प्राप्त कर सकते हैं, तो आप बस मुझे लगता है कि ये प्रशांत जी ने जितनी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो सब लोगों को नोट डाउन कर लेनी चाहिए और जुड़ जाइए ICCA से। और जो भी फ़ायदे होते हैं और जो भी आपको गाइडेंस चाहिए वो आप इजीली अवेलेबल है, तो वो सबसे कॉन्टेक्ट कर ही वो ये आगे बढ़ सकते हैं ना। और हम प्रोग्राम में बातें भी कर रहे हैं तो ये जो गाने और खाने की हमने जो मेल किया हुआ है
1: जी जी जी एब्सोल्युटली, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमें भी कॉल आ रहे हैं और जो हमारा जो गाना है, एक रिक्वेस्ट आई है मिस्टर नितिन जैन एंड फैमिली की तरफ से। जिगीशा और नितिन जी और मोनिका जी की रिक्वेस्ट है, उनकी बेटी तितिक्षा का बर्थडे है आज और जो गाना है वो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है बार बार दिन ये आए, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में।
0: हाँ।
1: और मेरे ख्याल में प्रशांत जी की जो वाइफ है उनका
0: हाँ।
1: जन्मदिन भी कल ही है प्रशांत जी,
2: मंडे आरती जी का जन्मदिन मंडे,
1: तो एब्सोल्युटली उनके लिए भी एडवांस में मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड लेट्स हियर द सॉन्ग।
0: और हमेशा से पता ही है ना हमें कि रफ़ी जी का ये गाना जो है वो बर्थडे का गाना, किसी भी बर्थडे हो तो ये गाना हम सबसे पहले सुनते हैं। तो चलिए सुनते हैं और सबको हमारे सब

0: नजर रुक जाए। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये हम सब की है आरजू। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे गेस्ट की तरफ। तो कपिल जी, हमारे सुनने वाले और हम सब आपसे ये जानना चाहते थे कि द इंडिया करी हाउस की शुरुआत तो आपने यहाँ पे करी ही, पर ये ब्रेन चाइल्ड जो था, ये जो कॉन्सेप्ट था, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? हाउ डिड यू एंड अप कमिंग टू सैस्केटून, और आप इंडिया में कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा इस विषय में चर्चा करें। तो
1: मैं इंडिया में दिल्ली से हूँ
0: जी,
1: सो सेम सिटी एज सोनू निगम जी।
0: एब्सोल्युटली।
1: तो सोनू निगम जी के बारे में ना, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं सही दिन पे आया हूँ एक्चुअली में, कि सोनू निगम का ही दिन है, और वो भी
2: बोलो दिल्ली, शाहरुख खान जी भी दिल्ली से,
1: शाहरुख खान भी हैं,
2: काफी अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज यहाँ पर आए हैं, और आज तो हमारे स्टूडियो में भी एक
0: क्या फरमा रहे थे?
1: तो हाँ, मैं ये बोल रहा था कि मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि डेडिकेशन की बात से
0: जी
1: जो आपने बात बोली सोनू निगम जी के बारे में, तो मैं जिनसे कोचिंग लेता था, सोनू निगम जी उनके क्लासमेट थे।
0: तो अच्छा, अच्छा,
1: हम बहुत अक्सर हम सोनू निगम जी के बारे में बात करते थे क्योंकि उनके बेस्ट फ्रेंड थे। तो डेडिकेशन के बारे में उन्होंने मुझे एक बार बताया था सोनू जी के बारे में, कि सोनू निगम ने कभी भी अपने स्कूल टाइम में भी कभी भी ठंडा पानी नहीं पिया, रेगुलर पानी नहीं पिया, वो गर्म पानी ही पीते थे, सर्दी हो कि गर्मी हो, अपने गले में मफलर जरूर बांध के रखते थे।
2: अच्छा।
1: वो अपने गले का इतना ख्याल रखते थे। तो मतलब कि जो भी आज सक्सेसफुल है, वो आज सक्सेसफुल इसलिए नहीं है कि उसने कुछ उसके पास कोई सीक्रेट था, आई थिंक वो डेडिकेशन थी।
0: एब्सोल्युटली।
1: और वो कोई भी सक्सेसफुल पर्सन हो, राइट, जैसे सोनू निगम जी हैं, रफ़ी जी हैं
0: जी,
1: तो ये मेरे लिए बड़ी प्राउड मोमेंट की बात है कि आज उन्हीं के बारे में बातें हो रही है, और दिल्ली वाले के लिए ना बड़ा एक वो अच्छी फीलिंग होती है कि जब कोई दिल्ली वाला मिल जाए,
0: दिल्ली की बात हो रही।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: एब्सोल्युटली।
1: तो मैं दिल्ली से ही हूँ, और दिल्ली से मेरा आना हुआ कैनेडा 2016 में
0: जी।
1: तो 2016 में मैं आया था, मेरा इंडिया में खुद का रेस्टोरेंट था बैंगलोर में।
0: अच्छा जी।
1: मुझे भी नहीं पता था मेरी किस्मत में कनाडा आना लिखा है, मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं कनाडा के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता था उससे पहले।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो
0: अच्छा।
1: मैंने दिल्ली में रह के इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट IHM से ग्रेजुएशन करी, बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट करी, उसके बाद में फर्दर स्टडीज के लिए ऑस्ट्रेलिया गया
0: जी,
1: वहाँ से मैं रेड सील शेफ बना, और वो होने के बाद मैं वापस इंडिया चला गया। तो इंडिया में मैंने अपना मेरा रेस्टोरेंट था बैंगलोर में, और बस ऐसे ही किसी कंसल्टेंट ने बोला कि आपको कनाडा जाना चाहिए, आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है
0: जी,
1: और उन्होंने फाइल लगा दी, और वहाँ मैंने रेस्टोरेंट खोल लिया। तो जब रेस्टोरेंट चल पड़ा, उधर से मेरी PR आ गई, और मुझे यहाँ पर आना पड़ा। तो ऐसे आना हुआ कनाडा, और सैस्कटून तो जैसे निरूपा जी आपने बताया कि लोगों का प्यार ही खींच के लाया है
2: जी, जी, जी।
1: क्योंकि लोग सैस्कटून, प्रिंस एल्बर्ट यहाँ सबसे हमारे पास आया करते थे, और बीइंग अ डेलीएट गाय, हम फूडी बहुत हैं
2: जी, जी,
1: बिल्कुल
2: जी,
1: आप मुंबई वालों की तरह।
0: एब्सोल्युटली।
1: है ना, क्योंकि आपके पास भी पूरी इंडिया का फूड है, दिल्ली वालों के पास भी पूरी इंडिया का फूड है। तो यहाँ पर आके सबसे ज़्यादा जो कमी महसूस होती थी, वो उस दिल्ली वाले फूड की महसूस होती थी, चाटों की होती थी, भल्ला पापड़ी चाट नहीं मिलती थी, एक सोया चाप आपने सुना होगा। हाँ। वो
0: जी,
1: दिल्ली
0: जी,
1: में
0: जी।
1: इतनी पॉपुलर थी, यहाँ कहीं नहीं मिलती थी।
2: आपके मुझे लगता है करिया उसका जो आपने कहा सोया पापड़ी, वो तो
1: सोया चाप
2: वो मेरे बेटे को भी इतना पसंद है कि आपकी वो मास्टरी है सचमुच में, बहुत ही बढ़िया आपका खाना होता है, और मुझे ये बताने की जरूरत भी नहीं है
0: जी,
2: यहाँ के सास्करण के सभी लोगों को पता है कि कहीं भी रेस्टोरेंट में जाना हो तो सबसे पहले वो आप ही के रेस्टोरेंट पर।
0: और मेरे ख्याल में सस्केचुअन प्रोविंस का स्क्वायर फुटेज के हिसाब से सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है आपका, जो सैस्केटून में है
1: जी। हाँ जी,
0: एम आई राइट?
1: बिल्कुल। उसमें हम चाहते थे कि वो दिल्ली मुंबई वाली फील हो, क्योंकि अच्छा। जब हमने 2020 में द इंडिया करी हाउस किसी और से लिया था, तो हमने ये बाय किया किसी और से, तो सबसे पहली जो चीज़ हमने देखी कि वो बहुत ही आउटडेटेड रेस्टोरेंट था।
2: अच्छा।
1: और यहाँ पर ज़्यादातर इंडियन रेस्टोरेंट वैसे ही थे, तो उसमें क्या होता है कि जो यहाँ कर जो लोकल वाइट पीपल हैं, उनको लगता है कि हम इंडिया बहुत पिछड़ा हुआ देश है। उसमें जो फोटोग्राफ्स लगाते थे हम, वो मटका उठा के औरतें जा रही हैं पानी भरने, तो उनके दिमाग में ये इमेज आती थी, मैं भी ऐसे ही हूँ यहाँ पर, ठीक है। और उसमें तबले टांग रखे हैं उन्होंने, उनको नहीं पता कि दिल्ली मुंबई में जो अब जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो क्लब्स हैं, जो वो यहाँ से भी आगे निकल चुके हैं। तो मुझे सबसे पहले तो वो इमेज बदलनी थी, और वो औरतों की इमेज बदलनी थी, वो बड़ी बदलनी जरूरी थी। अभी आप मेरे रेस्टोरेंट में आएंगे, अब आप ध्यान दें कि मेरे रेस्टोरेंट में डिफरेंट डिफरेंट वुमेन की पिक्चर्स लगी
2: हुई लगाकर हाँ,
1: किसी भी रेस्टोरेंट में आप द इंडिया रजाइना में जाएंगे वहां पर भी द इंडिया सास्कटून में आएंगे वही मेरी थीम है टू शो अ मॉडर्न इंडियन वुमेन यू नो कि ये है आज की नारी हिंदुस्तान की वो नहीं है जो पानी भरने 50 किलोमीटर जाया करती थी 20 किलोमीटर पैदल चलती थी तो वो एक खाने के साथ साथ एक इंडिया की यू नो इंडिया के बारे में बताना और उसके बारे में गलतफहमी दूर करना वो लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स नहीं रहे हम
0: एब्सोल्युटली
1: है ना तो वो भी करना जरूरी था तो जैसे सोया चाप की बात हम कर रहे थे सोया चाप मैं सबसे पहले लेके आया था प्रोविंस में तो वो लेके आया भल्ला पापड़ी लेके आया भल्ला नहीं मिलता था यहाँ पे हम दिल्ली वाले तो भल्ले पापड़ी मतलब नहीं चाट के बगैर नहीं होता था हमारे से है ना भल्ला नहीं था बेसिक तो वो खाने लोग प्रिंस एल्बर्ट सास्कटून से आते थे तो जब भी आते रहो कहते रहे बहुत दूर आना पड़ता है आपके खाने के लिए तो हम हैरान होते थे कि इतनी दूर से कोई खाना खाने कैसे आ सकता है
0: सही बात सोचने वाली बात है
1: तो वो प्यार ही है जो लोगों का जो हमें सास्कटून तक खींच के लाया जैसे कि आपने बताया कि आप भी वहाँ आते थे और अब लोग विनीपेग से हमारे यहाँ खाना खाने आते हैं अब लोग एडमिंटन से भी खाना खाने सास्कटून में आते हैं
0: जी जी
1: तो अब वहाँ से लोग बुला रहे हैं अब ऊपर वाला जानता है अब जहाँ जहाँ बुला रहे हैं अब अगर वहाँ जा पाएंगे तो वही जानता है
2: नहीं आपके दिल में जो है कि नहीं ये जो चीज आप लोगों तक पहुंचा रहे हो और खाना चीज ही ऐसी होती है ना और मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ कि जो इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं ना उन लोगों को खाने की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो मैंने सुना है रजाइना के यूनिवर्सिटी कैंपस में भी आपका खुला हुआ है एक छोटा सा
1: जी बिल्कुल सही फरमाया आपने कि रजाइना यूनिवर्सिटी रजाइना में कैंपस में हमारा फूड कोर्ट में छोटा नहीं है बहुत बड़ा है एक्चुअली में
2: अच्छा
1: वो 1500 स्क्वायर फीट का सिर्फ किचन है हमारा
0: यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर
2: जी अंदर ही है
1: जी तो वो अब तक का सबसे बड़ा किचन है एक्चुअली में हमारा वो इस मद्देनजर रखा गया क्योंकि 17,500 तो स्टूडेंट्स हैं और 2200 फैकल्टीज हैं अंदर तो ऑलमोस्ट 20,000 लोग हैं अंदर जिनको सिर्फ 3 ही रेस्टोरेंट ने सर्व करना है फूड कोर्ट के अंदर
0: अच्छा
1: तो वो हमारे लिए अपने आप एक जो मोमेंट था जो यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना में किसी इंडियन रेस्टोरेंट का जाना या किसी भी यूनिवर्सिटी में एज अ फुल फ्लेज्ड फूड कोर्ट में इंडियन रेस्टोरेंट का जाना
0: जी
1: वो बहुत प्राउड मोमेंट था
2: स्टूडेंट के खाने का प्रॉब्लम है वो आपने सॉल्व कर दिया है ना
1: जी
2: बहुत ही अच्छी आपने जो ये कदम उठाया है सचमुच में वो जरूरी था और आपको बहुत सारे लोगों के दुआएं मिलने वाली है और उनके पेरेंट्स भी क्योंकि जब भी पता चलता है कि खाने का प्रॉब्लम बच्चों को कभी भी इंडिया से बाहर जाते हैं तो उन लोगों को खाने का ही प्रॉब्लम होता है बीइंग वेजिटेरियन मुझे पता है कि अगर इतना अच्छा घर का खाना जैसे आपके रेस्टोरेंट का होता है वो मिल जाए तो स्टूडेंट का आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है
1: वेजिटेरियंस के लिए खासकर
2: जी हाँ जी
1: और जैसे आपने बोला पेरेंट्स के लिए खासकर क्योंकि हम भी सब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही गए थे बाहर है ना तो मॉम फोन करती थी सबसे पहले पूछती थी क्या खाया
2: क्या किया
1: खाना खाया अब उनको क्या बताएं यहाँ के बच्चे क्या बताएं बेगल खा रहे राइट तो वो न्यूट्रिशियस फूड नहीं था
2: ये मुझे इतना अच्छा लगा जब मेरी बेटी ने कहा कि भाई वहां पर भी इंडिया करी हाउस खुलने वाला है तो उसके उसके उसकी जो खुशी थी वो मैं भी महसूस कर पा रही थी क्योंकि बच्चे जो वहाँ पे पढ़ाई करते हैं तो उनके पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो बाद में जाकर खाना बनाए या इतने उनकी हेक्टिक लाइफ होती है तो वहाँ पर अगर खाना मिल जाए तो और क्या चाहिए
1: जी खाना मिले और घर का खाना उसमें हमने टिफिन सर्विस भी शुरू कर रहे हैं ताकि कोई भी बच्चा है अगर $250 या $300 अगर मैं वो टिफिन लेता है तो उनके लिए कितना आसान है अगर मैं उनकी जगह पे होता तो मैं भी सोच रहा कि मैं क्लासेस अटेंड करने जाता मेरे अपना टिफिन लिया 2 रोटी ऑन कैंपस खा ली या 3 रोटी वहां पे खा ली 3 रोटी में काम पे ले गया न्यूट्रिशियस फूड मैंने अपनी एजुकेशन वाली जगह पे खाया और काम पर भी खाया और स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस राइट क्योंकि उनके लिए ऑप्शंस बहुत कम है एंड इनफैक्ट वेजिटेरियंस ही नहीं आप नो ऑनियन नो गार्लिक वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी वहाँ पर फैसिलिटी है वीगन हो ग्लूटेन हो कुछ भी हो तो आई थिंक वो जो मेरा सपना था कि हाँ वहाँ पर जाकर मुझे सब बच्चों के लिए करना है पैसे कमाने के लिए नहीं वो ऊपर वाले ने
2: यही शक्ति तो आपकी तरक्की हो रही है ना कि आपने पैसे कमाने के लिए नहीं आपके दिल में जो अच्छे ख्यालात है जैसे आप भी स्टूडेंट रह चुके थे तो आपको पता है कि खाने का कितना प्रॉब्लम है हालांकि आप तो अच्छा बना ही लेते होंगे तो आपको इतना खाने का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा लेकिन जो दूसरे जो बच्चे यहाँ पे फ्यूचर में भी आएंगे तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा आपने जो डिसीजन लिया है तो भगवान करे आपकी ऐसी तरक्की हो और हमारे जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने
0: एब्सोल्युटली और मेरे ख्याल में कैंपस के अलावा आपका और एक लोकेशन है रजाइना में वो कहाँ पे बताएं जरा
1: हमारे एक्चुअली में टोटल इंडियन रेस्टोरेंट के 4 लोकेशन है टोटल रेस्टोरेंट ये हमारा 7th रेस्टोरेंट है जो अभी यूनिवर्सिटी में खोला है तो हमारे 7 रेस्टोरेंट्स हैं इन टोटल और रॉस्टल पे है हमारा एक रेस्टोरेंट उसका नाम है द इंडिया करी हाउस एक्सप्रेस
0: अच्छा जी
1: हाँ जी तो वो भी एक्सप्रेस वाली जो डिविजन है वो भी हमारी विक्टोरिया एवेन्यू 806 विक्टोरिया एवेन्यू भी हमारा है. हाँ जी, उसके अलावा 3 और हमारे रेस्टोरेंट्स हैं. तो पर सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि अभी हम जो गर्वान महसूस कर रहे हैं वो अभी यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हैं.
2: जी, जी, जरूर.
1: तो क्योंकि मुझे लगता है कि अभी सितंबर में नया बैच आ रहा है, और आप खुद देखेंगे कि वो जब नए बच्चे आते हैं ना तो होमसिक फील करते हैं. जैसी आपके घर का खाना मिल जाता है तो आधी होमसिकनेस तो वैसी दूर हो जाती है.
2: मुझे पता है मेरी बेटी के चेहरे के ऊपर जो मुस्कान थी, मम्मा वहाँ पे खुल गया है. तो देखिए, और यही खाना हमारे फोक फेस्ट में भी मिलने वाला है विनीत जी.
0: एब्सोल्युटली,
2: एब्सोल्युटली. हमारे लिसनर्स को वही बता देते हैं, बार बार हम यही कहते हैं कि आप देरी मत करना और अपना वो जो वीकेंड है वो फ्री रखिएगा और जरूर फोक फेस्ट में जाइएगा. और अब हुआ है ब्रेक लेने का वक्त, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद.
3: Full on. School days, fishing trips, barbecues, and every adventure in between. That's exactly why coming home just hits different. The fun's still on with Sastel Infinite 300 and Whole Home Wi-Fi. Sign up today and get corner-to-corner coverage for as low as $70 a month. Visit sastel.com/summer to get started. Conditions apply.
4: Shane's Surplus World brings the joy of surplus to Saskatoon. Shane sells brand new overstock and quality returns from a big, big major box store. Find brand name items at discount prices with new sales happening weekly, and save 50% or more on clothing every day. It's everything you could want, including a great deal. Shane's Surplus World at 120 1500 Quebec Avenue in Saskatoon and 521 Main Street in Bigger. Follow them on Facebook, Instagram, and TikTok for all the latest finds.
5: I feel like pizza.
6: I feel like beer.
7: This does not have to be a paradox.
8: Who are you?
7: I am Nicolas Flamel, the philosopher and alchemist. I try to turn base metals into the gold, eh? And you should head to Paradox Pizzeria and Brewery. They have Detroit-style cheesy crust pizza and one-of-a-kind ales.
9: Paradox Pizzeria and Brewery has all the in-house food, local brewed craft beer, and homey vibes you're looking for. And our slice was runner-up for the best gourmet pizza in Planet S. Paradox Pizzeria and Brewery at 806 Broadway Avenue. We're alchemically good.
7: The gold, eh?
4: Find your ideal property in Saskatoon with Shukla Realty. Shalini and Shekhar Shukla with REMAX Saskatoon provide seamless real estate solutions for effortless property sales. Whether you're looking for a single-family home or a luxury estate, a condo or a townhouse, a commercial space or an investment opportunity, our curated selection of properties will meet your needs. From teaching college students to becoming real estate experts, Shukla Realty is the name you can trust, guaranteed. Visit shuklarealty.com, that's S-H-U-K-L-A, or call 306-891-5580 for a free consultation today.
10: CFCR, we acknowledge that we are broadcasting from the traditional territory of the Cree, Dene, Soto, Dakota, Lakota, and Nakota nations, and homeland of the Métis. We recognize and respect their enduring connection to this land, which has been a site of gathering, culture, and tradition for thousands of years. We are committed to amplifying Indigenous voices and stories and to fostering relationships rooted in respect and understanding as we work towards reconciliation. We are grateful for the opportunity to serve our community on this land.
2: Welcome back to Sangeetmala, jo aap sun rahe hain CFCR 90.5 FM par. मेरे यानी नीपा के साथ और मेरा साथ दे रहे हैं
0: आपका होस्ट और दोस्त विनीत.
2: और हमारे स्टूडियो में हमारे दो गेस्ट आए हुए हैं, प्रशांत जी और हमारे कपिल जी. और अभी अभी देखिए हमें कॉल भी आया था, राजेश जी सुनना चाहते हैं फिल्म सूरज का, तेरी प्यारी प्यारी सूरत पे किसी की नजर ना लगे. और विनीत जी, राजेश जी ने एक मैसेज भी कपिल जी के लिए भेजा है
0: जी,
2: कि लास्ट वीक उनके यहाँ पर टोरंटो से गेस्ट आए थे और वो हमारे कपिल जी के रेस्टोरेंट पर द इंडिया करियास में लेकर गए थे और उनको भी वो खाना बेहद पसंद आया. तो मैं तो कहती हूँ राजेश जी, आप नहीं यहाँ पर, जो कोई भी गेस्ट आता है बाहर से तो हम लोग प्रिफर करते हैं कि उनको हम वहीं पे ले जाएं,
0: क्योंकि वहाँ
2: पे खाना जो होता है वो दिल से बनाते हैं हमारे कपिल जी. और देखिए सेहत का ख्याल भी उनका है जो रखते हैं, उनका खाना इतना अच्छा होता है तो उनके ऊपर की उनके ऊपर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना राजेश, मैंने सही कहा ना कपिल जी?
1: जी, वही मैंने

0: आंखों वहीं पे जाएंगे। तो ये एक
1: मैं भी इसमें एक ऐड करना चाहूंगा, मेरी मासी आई टोरंटो से।
2: अच्छा।
1: और तब द इंडियन करी हाउस नया नया खुला था। अब सुना तो था क्योंकि वो टोरंटो से आए थे, हमें ये था कि टोरंटो में तो बेस्ट टू बेस्ट ही खाना और सर्विस मिली जाती है। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई विजिटेड द इंडियन करी हाउस। तो मेरी मासी जब निकली तो बोली ये तो हमारे टोरंटो में भी नहीं मिलता जो यहाँ मिला हमें। तो इट्स काइंड ऑफ यू नो कपिल भाई, दिस इज अ काइंड ऑफ एप्रिसिएशन टू यू, योर एक्सपीरियंस एंड योर सर्विस टू द कम्युनिटी।
3: नहीं, आप लोगों का प्यार ही है। मैं कई बारी तो हमारी आंखों में मतलब लिटरली आंसू आ जाते हैं, कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं सुन के बच्चों की तरफ से। एक कपल आए मेरे पास, वो कह रहे हैं 12 साल बाद हम बाहर खाना खाए हैं, क्योंकि 12 साल तक हम किसी रेस्टोरेंट में जाने लायक कोई रेस्टोरेंट ही नहीं था। 12 साल कह रहे आज आपकी वजह से मेरा पूरा परिवार, हम सब मिले हैं और इस रेस्टोरेंट में वो समय व्यतीत किया है। और मतलब इतना इमोशनल हो जाता है कभी कभार कि मैं वही बता रहा हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए और बढ़ती जा रही है लोगों के लिए, इनफैक्ट अपने स्टाफ के लिए भी, है ना। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।
2: तो चलिए सुनवा देते हैं राजेश की फरमाइश का।
0: फिल्म ससुराल से तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दूर चश्मे बद्दूर चश्मे बद्दूर।

0: गाने भी इतने प्यारे चल रहे हैं, हमें रिक्वेस्ट भी लगातार आ रही है, और आज गाना और खाना दोनों की हम लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं, तो और अगले गाने की ओर हम चलते हैं। निहारिका सिंह जी सुनना चाहती है फिल्म आई थी साथिया का टाइटल सॉन्ग साथिया, सोनू निगम की आवाज़ में। तो सुनते हैं निहारिका की फरमाइश का ये गाना।
1: साथिया मधम मधम तेरे

0: जी हाँ दोस्तों, ये गाना था साथिया मूवी से, साथिया टाइटल ट्रैक। और अगले गाने की भी एक फरमाइश आई है हमारे
1: जी
0: सैस्केटून के एक रेगुलर लिसनर मिस्टर अरुण आहिर से। उनके बेटे का जन्मदिन है, उनके बेटे का नाम है तन्विक, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है फिल्म ABCD2 से, ओए तेरा हैप्पी बर्थडे। तो लेट्स हियर द सॉन्ग फॉर तन्विक।
2: मेरी तो एंट्री नहीं हुई है।

0: विनी जी, देखिए यही तो मज़ा है ना कि जो इतने अच्छे अच्छे गाने चल रहे हैं और हमारे गेस्ट के साथ हम लोग बातें भी कर रहे हैं और रिक्वेस्ट भी इतनी सारी आ रही है कि हम लोगों को गाने भी चलाने होते हैं। और जो भी कॉल करता है ना, वो हमेशा से वही, उन लोग ने यही कहा कि हमारी तरफ से कपिल जी को और प्रशांत जी को हमारा हाई कहिएगा। तो देखिए, अभी सुधीर सूर्यवंशी जी का भी फोन आया था और वो सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में गाया हुआ, फिल्म आई थी भीगी रात, और गाने के बोल है दिल जो ना कह सका वही राज दिल कहने की रात आई।
1: क्या बात है, फिल्म दिल जो ना कह सका जो गाना है भीगी रात मूवी से, मोहम्मद रफी की आवाज़, रोशन जी का म्यूजिक और मजरू सुल्तानपुरी के लिरिक्स। लेट्स हियर द सॉन्ग फॉर मिस्टर सूर्यवंशी जी।

0: देखिए ये हमारे आज के प्रोग्राम में ना एक रफी जी की फरमाइश आ रही है, एक सुरुल जी की फरमाइश आ रही है, तो अगला जो गाना है हमारे यहाँ जो प्रशांत जी बैठे हैं उनकी धर्मपत्नी आरती जी ये गाना डेडिकेट करना चाहते हैं अपने प्रशांत जी के लिए, और एडमिंटन से श्रुति ये गाना जो मैं हम अभी अगला चलाने वाले हैं, फिल्म आई थी कभी खुशी कभी गम का, सोनू निगम की और अलका याग्निक की आवाज़ में गाया हुआ गाना है सूरज हुआ मद्दम, तो चला सुना देते हैं यही गाना इन लोगों की फरमाइश पर।
1: कुछ रिश्ते चाहते चुप तो नहीं रहा

0: विनी जी, पता है हमारे लिसनर हमें हमेशा कहते हैं कि आप गाने हैं ना पूरे पूरे नहीं सुनाते, लेकिन हम क्या करें ना कि हमारी भी मजबूरी होती है। मुझे भी पूरे गाने सुनने का बहुत शौक है, जैसे हमारे लिसनर्स को भी पसंद है, लेकिन हमारे पास रिक्वेस्ट होती है सबके गाने भी हमें चलाने होते हैं। और मैं यहाँ पर स्टूडियो में आपके सामने हूँ नीपा, और मेरे साथ में प्रशांत जी भी है और कपिल जी भी है, और हम हमारे विनीत जी को जो लास्ट वीक उनके यहाँ हमारी लक्ष्मी जी छोटी बेटी पधारी है उनकी आपको बधाई देते हैं।
1: धन्यवाद, धन्यवाद जी, धन्यवाद।
0: और आप ही की आवाज में मैं चाहती हूँ कि दीक्षा जी है वो चाहती है कि वो आप अपनी छोटी सी बिटिया के लिए एक गाना सुना दे अपनी आवाज में, और फिल्म आई थी वास्तव का गाना है और उसके बोल हैं
1: मेरी दुनिया है तुझसे कहीं। जी हाँ, सोनू निगम की आवाज में मैं थोड़ा सा अपनी आवाज में गाना चाहूंगा और फिर कंटिन्यू करते हुए ओरिजिनल प्ले करूंगा। तो ये सॉन्ग मैं अपनी 8 दिन ओल्ड बेटी देविका के लिए डेडिकेट करूंगा।

0: है आपने, मुझे लगता है अपनी बिटिया और मुझे लगता है दीक्षा को भी आपने ये गाना डेडिकेट किया है, क्योंकि उनका जो आपकी लाइफ में उनका जो योगदान है वो तो हम भूल नहीं सकते।
1: जी जी एकदम, हम दोनों के योगदान के आदान प्रदान की वजह से ही हमें देविका प्राप्त हुई है, तो एब्सोल्युटली। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पिछले 9 महीने में उसको इतनी क्रेविंग होती थी द इंडिया करी हाउस जाने की या फिर वहाँ से खाना मंगाने की, पर मैं कहता था थोड़ा संयम रखो, 9 महीने के बाद हम ज़रूर जाएंगे, और बस अब हम आने वाले 1-2 दिन में जाएंगे। तो हाँ, वो भी काफ़ी पसंद करती है द इंडिया करी हाउस के खाने।
0: कपिल जी, यहाँ पर मुझे आपको एक सवाल पूछना है कि फोक फेस्ट में जैसे आपका वहाँ पे बड़ा सा स्टॉल होगा, तो आप उसमें अट्रैक्शन क्या है,
1: क्या नया ला रहे हैं आप फोक फेस्ट में?
2: जी, इस बारी फोक फेस्ट में ना, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी भी पहली दफ़ा है हम किसी इतने बड़े फेस्टिवल में आ रहे हैं, तो अब और भी फूड स्टॉल्स होंगे, और भी यू नो स्टॉल्स होंगे वहाँ पर, पेविलियंस होंगे, है ना। तो अगर मैं वहाँ पर जाता हूँ तो मैं भी चाहूँगा कि मैं और जगह भी ट्राई करूँ। सो सबसे बड़ी जो चीज़ है, मतलब हम अगर खुद देखना चाहेंगे तो हम देखना चाहेंगे कि हैंड हेल्ड फूड होना चाहिए इंडियन कुजीन में। बस ये थोड़ी सी एक चैलेंज है कि आपको कहीं पर रख के, नान को रख के या रोटी को रख के कहीं खाना पड़ता, तो इस बारी हैंड हेल्ड फूड्स में जो एक हाइब्रिड किया गया है, तो रैप्स लेके आ रहे हैं। सो इंडियन रैप्स लेके आ रहे हैं, टैको फॉर्म में भी लेके आ रहे हैं, उनको हम पॉकेट्स बोलते हैं, तो टैको फॉर्म में, ताकि आप चलते चलते प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम का लुत्फ उठाते उठाते आप खाने का भी मजा ले सकते हैं, मैसी भी ना हो। जी, और चाट्स लेके आ रहे हैं जो कि पहले कभी नहीं सर्व करी गई थी, वो तो चाट्स है ही नहीं यहाँ पर, तो सर्व कैसे करी जाएंगी।
1: जी,
2: एक गुलाबी चाट है हमारी, बहुत पॉपुलर है, वो हम लेके आ रहे हैं। वो हमने सोचा नहीं था, बट मैंने कहा चलो इस बार गेस्ट को कुछ डिफरेंट देते हैं, जो क्योंकि गुलाबी चाट की जो पैटी है वो बीट रूट और किडनी बीन्स, नहीं राजमा की बनी हुई है, तो उस बीट रूट और राजमा के गलौटी कबाब की चाट बनाई गई है, उसको गुलाबी चाट नाम दिया क्योंकि इसमें दही भी बीट रूट का है।
1: जी जी,
2: तो वो इस बारी हम वहाँ पर प्रेजेंट करना चाहेंगे। वो
0: हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं कि वहाँ पर जाने के बाद उनको क्या ट्राई करना है। और देखिए, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं कि खाने के बारे में, और एक बढ़िया सा गाना है जो रिक्वेस्ट आई हुई है ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो।
1: जी,
0: फिल्म का नाम है अग्निपथ और साहिल मानी जी सुनना चाहते हैं, और ये सोनू निगम जी का एक बहुत ही बेहतरीन गाना, जो हम कह सकते हैं कि ये गाना सुनते ही आपकी भी आंखें नम हो जाती है, और गाने के बोल है अभी मुझमें कहीं बाकी।

0: हाय, क्या क्या गाना है विनी जी। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये गाना हम पूरा नहीं चला पाए हैं, क्योंकि देखिए हमेशा की तरह टाइम भी ख़त्म होने को आया है और हमें हमारे गेस्ट का भी शुक्रिया अदा करना है। और जाते जाते प्रशांत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच निपा जी, विनी जी अगेन टू इनवाइटिंग अस हियर। इट वाज अ ऑनर फ्रॉम ICC अबाउट।
0: सेम हियर,
1: थैंक यू सो मच। और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन अब कपिल भाई को है।
0: हाँ जी।
1: अब ये फोक फेस्ट के हमारे जो है फूड जो है वेंडर है मेन, राइट? सो मैंने सुना है कपिल भाई, देयर आर रूमर्स इन द मार्केट, आई एम नॉट श्योर दैट्स करेक्ट और नॉट, बट यू हैव टू लेट मी नो इज इट करेक्ट और नॉट, बट देयर आर रूमर्स दैट द इंडियन करी हाउस इज चेंजिंग समथिंग। आई एम नॉट श्योर व्हाट एंड व्हाई, बट दैट्स द राइट पर्सन आई एम आस्किंग, दैट द रीजन आई एम आस्किंग दैट क्वेश्चन टू अ करेक्ट पर्सन, सो इफ यू कैन आंसर मी दैट।
2: जी, वो र्यूमर सही सुन रहे हैं आप, बट अगेन उसका जवाब आई थिंक मैं फोक फेस्ट में देना चाहूँगा, और वो एक बहुत बड़ा चेंज भी हो सकता है और एक हमारे व्यूवर्स हमारे कस्टमर्स
0: अच्छा
2: के लिए
0: हाँ
2: एक अच्छा चेंज होगा। अगेन नथिंग इज चेंजिंग बट अ लॉट इज चेंजिंग, दैट इज अ मैसेज।
0: वो सीक्रेट रखना है, राइट? वही एंड मोमेंट तक आपको लगता है कि सबको वो अंदर से हो कि क्या चेंज आने वाला है, क्या होने वाला है। बहुत अच्छे से आपने पेश किया है। तो आपको अगर कोई भी जवाब चाहिए तो आप सीधा पहुंच जाएगा हॉल नंबर डी में, और
1: फोक फेस्ट 2026 हॉल डी 14 और 15 अगस्त। आपको घर नहीं रहना है, 3 बजे से मिडनाइट दोनों दिन आप हमारे साथ ICCA के साथ उधर मनाएंगे। खाना पीना डांस, इट्स अ डिफरेंट वाइब, कम एंड लेट्स सेलिब्रेट टुगेदर।
0: जी हाँ, और देखिए जाते जाते हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच कपिल जी, आप यहाँ पर आए, और प्रशांत जी आपका भी, और विनीत जी आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और हमारे लिसनर्स जो इतने अच्छे अच्छे गाने हमें भेज रहे हैं। तो हमेशा की तरह मैं आपको जाते जाते एक गाना सुना कर जाऊंगी, और ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है जिसके लिए हमें उनका शुक्रिया अदा करना है। एटीट्यूड लाइफ में रखना बहुत जरूरी है, लेकिन ग्रेटिट्यूड का। टेक केयर, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए सायोनारा।
3: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, और मैं भी अंत में यही कहना चाहूंगा कि आप दोनों से बात करके बहुत आनंद महसूस हुआ, और द इंडिया करी हाउस का जो जो हमारे वेंडर हैं उस दिन ICCA के लिए, हम काफ़ी एक्साइटेड हैं उस दिन मेन्यू के लिए। होप करते हैं कि लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएं।
1: बिल्कुल।
3: तो दोस्तों, इसी तरह हम आपको अगले शनिवार मिलेंगे ठीक सुबह 11 बजे। तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, बाय बाय।

0: celebrating the national spirit of Pakistan with Coke Studio, Season 8, starting from 16th August.
1: ये है तुम्हारे नाम, इस मिट्टी के लिए बहते लहू के नाम, मेरे दिल में बसे जान से प्यारे पाकिस्तान के नाम।